0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसी बुदली से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: Hey, fresher. You, chocolate fresher. All this joya che stuff. मतलब क्या है?
1: आंखों को बंद कर जब तुमको देखा, जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा।

सूचना समाचार अनि मनोरञ्जन को साथी रेडियो टाइगर रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम यति बेला साँझको छ बजेको छ।

0: व्हाट्सएपमा कसको म्यासेज आएर बसेको रहेछ। भाइ साहब, मेरा नाम मोनु शाह हे। आपने हाम्रो बजार पर आइप्याड बेच्ने के लिए रखा हे ना। हिन्दी पो बोल्छ त यो त। हाँ भाइ साहब, हाँ लेख्न पर्यो। ल बिक्छ जस्तो छ। क्या मैं तुम्हें कल कर सकता हूँ? कल गर्छु पो भन्छ त। ओके सरजी, करो न। लौ कल नै पो गरिहाले त। हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्ते भाई साहब, वो आईप्याड बिक चुका है या अभी भी उपलब्ध है भाई साहब?
0: छ सर, छ, बिकेको छैन नि।
1: नै बिका है? ये सुनकर बहुत खुशी हुई। दरअसल मुझे उस आईप्याड की जरूरत थी। आपकी लोकेशन कहाँ है भाई साहब? क्या मैं एक बार इसे देखकर जा सकता हूँ क्या?
0: ए, मिलेगा मिलेगा बिल्कुल। मैं काठमाडौँ से हूँ सर जी।
1: अरे वाह, मैं भी काठमाडौँ में ही हूँ। क्या आप ग्रीन होटल में मिलकर मुझे आईप्याड दिखा सकती है सर जी?
0: हाँ, ग्रीन होटल रे? यो त फाइभ स्टार होटल होइन र भने।
2: ओहो, निकै धनी मान्छेले पो किन्न लागेछ कि क्या हो? किन नमिल्नु, मिलिहाल्छ नि।
0: हाँ सरजी, क्यों नहीं, मैं आऊंगा ना आईप्याड लेकर।
1: ठीक है भाई साहब, अगर ऐसा हो तो दोपहर एक बजे ग्रीन होटल की दूसरी मंजिल के पहले केबिन में आ जाइए।
0: ओके सरजी, ओके, म ठ्याक्कै एक बजे आइपुग्छु है त।
2: फाइभ स्टार होटलमै बोलाएपछि त ठुलै मान्छे रहेछ नि। इन्डियन हो कि क्या हो?
0: जोसुकै होस् न, मेरो सामान बिके भइगयो नि।
2: त्यसपछि म्याकबुक बिक्ने भयो भनेर हतार हतार ग्रीन होटल पुगे म्याम।
3: ए अनि अनि

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार सर जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आइए बैठिए।
0: धन्यवाद सर।
1: असल में मेरा घर भारत में है और मुझे नेपाली इतनी अच्छी तरह नहीं आती सर जी। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी सर जी?
0: नहीं नहीं सर जी, मैं हिंदी समझता हूँ सर जी।
1: अच्छा, तो आईपैड दिखाइए ना, इसे देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। आपको भी इसे हमरो बाजार पर डालना था और मुझे भी इसकी जरूरत थी, क्या संयोग है सर जी?
0: हो नहीं सर जी, हेर्नुस त,
1: मैं सब कुछ अच्छी तरह देख लेता हूँ, बस एक मिनट। हाँ सर जी,
0: भइहाल्छ नि, हेर्नुस् न हेर्नुस् सर।
1: अच्छा सर जी, मैंने इसकी सारी चीजें देख ली, वास्तव में ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर है सर जी। अच्छा, आपने इसकी कीमत 2,20,000 रखी है ना सर?